सुमधुरभाषिणी सुमधुरभाषिणी।

सुप्रभात, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की चौथी तिथि तदनुसार 26 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह के उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर हुरमुज जलडमरु मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त

0: नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हर रोज की तरह समूह स्वर में गाई इस मातृ वंदना के साथ। रचना है डॉक्टर ललित मोहन की, संगीत है रमेश इंदु बसु और सरबत हुसैन का।

सर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की, संगीत था रमेश इंद्र बसु और सरबत हुसैन का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं गणपति वंदना। रचना रविंद्र रावल की, स्वर और संगीत अनूप जलूटा का।

अभी आप सुन रहे थे, इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जीके सेतपाल की रचना। संगीत है पंडित गोविंद प्रसाद भवदीप का और आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक रचना। संगीत है मुरली मनोहर स्वरूप का और स्वर है

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:25 हो चुके हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह

बजकर 55 मिनट से एनएम रेडी करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 बजे से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा आगामी रबी फसल बोने पूर्व मिट्टी परीक्षण की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे श्री विपिन जैन। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रैली करेंगे सुबह 7:10 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:45 से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 से। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे से रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चिट्ठी से लोकगीत ये फरमाइशी कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:05 से। सुबह 10:30 से कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। सुबह 11 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 13वां भाग रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5 बजे से रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:02 से। इसे भी हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5:30 पर सुनिएगा भेंट वार्ता। विषय होगा मेरा युवा भारत एवं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। विशेषज्ञ होंगे रोहित यादव, उपनिदेशक मेरा युवा भारत सागर, भेंट करता होंगे जय शिखर। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:40 से। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:45 से और शाम 7:20 से। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा शाम 7:30 से। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। और रात्रि 8:30 से सुनिएगा भेंट वार्ता। विषय होगा किशोरियों में मोटापा और बढ़ती समस्याएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ज्योति चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और भेंट करता होंगे सुब्रता यादव। ये भेंट वार्ता सुनिएगा PMOS जागरूकता माह के मौके पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
1: आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीत में पाठ। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के हैं। आज आप सुनेंगे इसका 122वां भाग।

पर पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं नीछावर हो जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गई माताएं पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगी। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

उसका संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक श्रुति भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के आज आप सुन रहे थे इसका 122वां भाग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वागत तमाम सुनने वालों का, और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है एस जी बर्मन का, आवाज है गीता दत्त और मन्ना डे की। फिल्म का नाम जिद्दी।

प्यार में क्या क्या ना बना दिल

0: हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
1: बाटे
2: जंगल से।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है ये सब, जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
0: हाँ भाई समझा।

0: वफादारी और कॉन्डम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए, और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
1: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवा रहे हैं मीला फिल्म का गीत शमशाद बेगम और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीत है नौशाद का।

आखिर में आपको सुनवाते हैं मजरू का लिखा गीत, संगीत है उपिन अय्यर का, आवाज़ें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस।

इस गीत के साथ ही बोले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश है कार्यक्रम सुबह सुबह। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम अक्सर बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ लगातार शिकायती लहजे में बात करते हैं, और चाहे व्यक्तिगत स्तर पर देखें या सामूहिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, हर जगह हर कहीं हमारा असंतोष बना रहता है। हम अपनी कसौटी पर कसते हर बात को लगभग नकार देते हैं, बिना ये सोचे कि हम दूसरों की कसौटी पर कितना खरे उतरे, और बिना सुलझे तरीके से विमर्श करते केवल अपनी मान्यताओं को ही मान्यता देना ठीक नहीं। यानी सिक्के के एक ही पहलू को देखना और उसी को सब कुछ मान लेना ठीक नहीं, या जल्दबाजी हो सकती है। हमेशा दूसरों से शिकायत करते हम दूसरों की जगह अपने को रखकर देखना और उन सारी परिस्थितियों में अपनी आजमाइश करना बहुत जरूरी है जिन्हें हम दूर से देख रहे हैं, तभी एकदम सही राय हम बना पाते हैं। और बहुत ज्यादा अपेक्षाओं के चलते हम अनजाने ही दूसरों पर निर्भर होते चले जाते हैं, और अपनी विफलताओं की वजह भी दूसरों

को या बहुत सारी परिस्थितियों को मानना शुरू कर देते हैं और इस तरह से लगातार सफाई देते अपने को बेहतर सबसे बेहतर सिद्ध करते रहते हैं और इस तरह से एक खराब रवैये की लत बन जाती है और हम झूठे गुमान में फंसकर अपना नुकसान करते रहते हैं। इसीलिए अपना काम अपने तरीके से करते वो सारे काम भी करने की कोशिश करते चले जिनके लिए हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि अपेक्षा करते ही हम आश्रित हो जाते हैं और अपेक्षा पूरी ना हो पाने पर भावनात्मक रूप से भी हम आहत हो जाते हैं और जब उसके उलट लोग हम पर आश्रित हो जाते हैं और उन्हें हम बराबर सम्मान देते हुए जब संतुष्ट भी कर पाते हैं तो जो आत्मविश्वास हमें मिलता है और जो सुकून हमें मिलता है तो हर स्तर पर शिकायतें दूसरों से कम होती चली जाती हैं और खुद आगे बढ़कर हर बार पहल करने पर हम विषय के मर्म को समझ पाते हैं, क्योंकि करने के बाद ही कुछ खराब या अच्छा होता है, ना करने की सूरत में तो कुछ होता ही नहीं जैसे अच्छा या खराब कहा जा सके।

0: कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।
1: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।

0: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर न्यूज ऑन AIR।
1: न्यूज ऑन AIR?
0: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह वाह, कमाल है।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है आगामी रबी फसल बोनी पूर्व मिट्टी परीक्षण की जानकारी, और जानकारी दे रहे हैं श्री विपिन जैन, BTM आत्मा परियोजना सागर।
3: खेती का आधार ही बीज और एवं मृदा परीक्षण रहता है। मृदा परीक्षण को बहुत ही बारीकी से यदि अपन समझेंगे तो जैसे अपन बीमार हो जाते हैं तो अपने खून की जांच होती है। खून की जांच होने पर अपन को पता चल जाता है कि किस बीमारी के लक्षण हैं या कौन सा पैथोजन है जिसके कारण हमें दिक्कत हुई है। उसी प्रकार से भूमि में भी मैदा में भी 16 पोषक तत्व होते हैं और हर एक पोषक तत्व का एक अलग कार्य रहता है। और जब अपना पौधा अंकुरित होता है, अंकुर से लेकर फलन तक, उसे हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। यदि 16-17 पोषक तत्व की कमी होती है तो निश्चित रूप से पौधों की ग्रोथ में और एवं लास्ट में उसके उत्पादन में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए अब जैसे खरीफ का सीजन चल रहा है, जैसे अपनी अगली फसल की कटाई होती है अक्टूबर के लगभग, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। कटाई होने के उपरांत जैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेके जब तक अपन बुवाई नहीं करते, नवंबर या दिसंबर तक जब तक खेत की अपन बुवाई नहीं करते, तब तक अपन खेत से मैदा नमूना ले सकते हैं। ये एक फसल की कटाई से अगली फसल की बुवाई के बीच का जो समय है उस समय आप मैदा नमूने निकाल सकते। खेत का नमूना लेते समय मुख्य रूप से अपन को ध्यान रखना है वो अपन खेत का नमूना लें तो वो मेड़ के पास ना हो, पहली बात। दूसरी बात देखें कि कोई पेड़ की छाया जहाँ जिस स्थान पर पड़ती है उस

0: पौधरोपण को नहीं लेना है, ऐसे स्थान पर नहीं लेना है जहाँ बहुत अधिक जल भराव होता हो। इसके बाद जब अपन मृदा नमूना लेता है तो बी आकार का गड्ढा खोदना है। जब बी आकार का गड्ढा खोदते हैं तो इसमें अपन को ध्यान रखना है, गड्ढा खोदते समय लोहे की वस्तु का उपयोग नहीं करना है, लकड़ी का उपयोग करना है। और मिट्टी लेते समय अपन को 5-6 जगह से मिट्टी लेना है, और ऊपर की मिट्टी अपन को जब बी आकार का गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर की जो मिट्टी रहती है वो हटा देना है। उसमें ध्यान रखना किसी प्रकार का डंठल कचरा कूड़ा ये उसमें नहीं होना चाहिए। जब बी आकार का गड्ढा बनाने के बाद उससे साइड से अपन मिट्टी खोदते हैं नीचे तक, और ये मिट्टी लगभग लगभग आपकी हर जगह से आप आधा आधा किलो खोदे और लास्ट में सब मिला के आमने सामने का भाग अलग करते जाए और लास्ट में 500 ग्राम द्वारा आपका मृदा नमूना तैयार हो जाता है। जो भूमि में रहते हैं फफूंद जनक जो बीमारी रहती है जो एक बीज के द्वारा होती है और भूमि के द्वारा होती है, तो बहुत सारे रोग के जो जैसे कोई भी रोग लगा तो उसकी जो फंगस वगैरह है स्पोर वगैरह है वो जमीन में गिर जाते, तो ये जब अगली फसल होती है तो उस पर प्रकोप कहते हैं। तो ये जांचों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन सी फफूंदजनक बीमारी है, या जिस प्रकार से आप देखते हैं कि उकटा वगैरह होता है तो समय समय पर अपन मेरा परीक्षण करा के देख लेते हैं, फिर उनके उपचार भी कर सकते।
1: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, विषय था आगामी रबी फसल बोनी पूर्व मिट्टी परीक्षण की जानकारी, और जानकारी दे रहे थे श्री विपिन जैन, पीटीएम आत्म परियोजना सागर।

आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भजन क्लबिंग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू। 7 शहरों में 351 बसों को दिखाई गई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। और प्रदेश में 48 घंटे तेज बारिश का दौर। 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। भजन क्लबिंग में युवा कॉन्सर्ट जैसे माहौल में भजन गाते, तालियां बजाते और नाचते हैं, जिसमें पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत के साथ पेश किया जाता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भजन सुनते, तालियां बजाते और मंजीरा बजाते नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अंत्योदय के विचार को जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के भील दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। इस मौके पर 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। श्री गडकरी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए 5 एजेंडा तय किए गए हैं, जिनमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। श्री गडकरी ने कहा,
1: जो गरीब लोग हैं, गांव गरीब मजदूर किसान,

0: प्राइवेट टैक्सी में नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो पहल की है, यो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुरक्षित, किफायती और जवाबदेह सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था का निर्माण और उसका शुभारंभ के इस ऐतिहासिक दिन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
1: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को इस सेवा से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बसें चलाने का है और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने की योजना है। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क के साथ एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सड़कों की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। सीएस 2028 को देखते हुए उज्जैन से जुड़ने वाली सड़कों का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की नागपुर, जबलपुर और रायपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने और बालाघाट में बेहतर सड़क नेटवर्क की कार्ययोजना बनाने को भी कहा गया। वहीं जबलपुर के शहपुरा आरओबी क्षतिग्रस्त होने के कारण शाहपुरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी की यात्रा कर रहे यात्रियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने सागर से लेकर बंदा पहुंचे यात्रियों से भी बातचीत की और यात्रा के अनुभव जाने। यात्रियों ने आयुष्मान भारत, स्वच्छता, सड़क और पीएम स्कूल जैसी योजनाओं से हुए बदलावों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से युवाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने की भी अपील की। वंदे में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसी यात्राओं से देश की संस्कृति, विचारों को समझने के साथ राष्ट्रीय एकजुटता भी मजबूत होती है। पत्रकार स्वास्थ्य दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पत्रकारों की मांग को देखते हुए अब आवेदन की तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पत्रकार अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने के लिए शामिल हो सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज से आंगन मिलन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी और पोषण, स्वच्छता तथा टीकाकरण को लेकर जागरूक किया जाएगा। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल के बीच एसबीआई ने किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने या दूसरे एटीएम से लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाने की घोषणा की है। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसबीआई की सभी शाखाएं 27 सितंबर रविवार को भी खुली रहेंगी। यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी डिजिटल सेवाएं भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। इस बार अष्टमी और नौमी तिथि एक ही दिन पड़ने की वजह से पितृपक्ष 15 दिनों का रहेगा। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रदेश में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षकों को नए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 28 सितंबर से शुरू होगा। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने विशेष अभियान शुरू किया है। जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के 284 स्टेशनों पर पिछले एक महीने से पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।

इस दौरान करीब 10,000 नलों और वाटर बूथों की साफ सफाई की गई है। एशियन गेम्स में प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल के साथ मिलकर 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बधाई दी है। वहीं आज इसी स्पर्धा में प्रदेश की आशी चौकसी पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यूके के डोवर में डोवर से फ्रांस तक करीब 36 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को तीसरी बार सफलतापूर्वक पार किया है। इसके साथ ही वे इंग्लिश चैनल को 3 बार पार करने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 48 घंटे तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज जबलपुर रीवा समेत 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर और सतना में ऑरेंज अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में नमामि भारतम कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर सामूहिक गायन किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने कल जिले के ग्राम जमुनी स्थित 120 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का निरीक्षण किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नवोदयपुरम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। जबलपुर और आसपास के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही भारी बारिश से बरकी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मंडला में सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेरे सपनों का भारत विषय पर भाषण निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। दमोह में सेवा संकल्प अभियान के तहत नगरोल में यात्रा दल का प्रदेश के आनंद विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने आत्मीय स्वागत किया। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुना में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कल आरूण विकासखंड की ग्राम पंचायत रामपुर में जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया। विदिशा में महिला बाल विकास विभाग की सचिव ने कल जिले का भ्रमण किया। धार में अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। वहीं भोपाल में भी अनंत चतुर्दशी के मौके पर कल 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:21 हो चुके हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सच्चा झूठा इस फिल्म के गीत के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, लिखा इंडीवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फरमाइश है आप सभी की। व्हाट्सएप फरमाइश है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, और इसे भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांचल राय की फरमाइश है, ग्राम हिंगड़ी आलूट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ये फरमाइश हमें प्राप्त हुई, जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजुबाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ की, धनौरी तिलीवाला से ये फरमाइश लिख भेजी है निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया और अयान बापू ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सच्चा झूठा इस फिल्म का गीत।

साथी, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीतकार है मजरू, संगीत है नौशाद साहब का। फरमाइश आप सभी की। गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा से ये फरमाइश हमें प्राप्त हुई राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर की फरमाइश है। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें मिली गंगाधर ये मेकर, प्रमोद ये मेकर और प्रदीप ये मेकर की। कस्बा गुन्नौर

0: साथी फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज समय। इस समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: ये

0: कैसे?
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: बिका? हाँ मेरा फेवरेट कलर।
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।

0: निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहेगी तुमके कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश अभिमान फिल्म से आवाज है लता मंगेशकर की, बोल है मजरू के, संगीत है ST परमन का। फरमाइश है आप सभी की। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने ये फरमाइश लिख भेजी है। जनकपुरी सहारनपुर से ये फरमाइश हमें मिली जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो की। और इसी गीत के लिए फरमाइश है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू की। डुमराव बिहार से ये फरमाइश लिख दीजिए डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने। गोला बाजार बक्सर से ये फरमाइश है श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य की। और आदर्श नगर मलूर पंजाब से ये फरमाइश में प्राप्त हुई राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अभिमान फिल्म का गीत।

प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश। सिविल लाइन रोहतक हरियाणा से व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी है आंसू ललित मानसी और समस्त पंडित परिवार ने। संजय कॉलोनी खंडवा से ये फरमाइश लिख भेजी है अब्दुल गफ्फार डाबर, अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक डाबर और मोहम्मद उमर डाबर ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश है सोहन जोशी की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश हमें मिली है कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हिम्मता और डिंपल देवांगन की। ऊपरकोट बुलंदशहर से ये फरमाइश हमें प्राप्त हुई मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। फिल्म का नाम दो रास्ते, आभासी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

संस्कृत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में पहली पेशकश तेरा चेहरा इस एल्बम से, आवाज है अदनान सामी की, गीत लिखा है समीर ने और धुन है अदनान सामी की ही।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18%

0: टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फैज अनवर का लिखा ये गीत। आवाज है बाबुल सुप्रियो की।